0: पास बाकार का उपदेश पास बीच दर्शन का उपदेश ज्ञान के बिन मातान बना उपदेश बिन मातान बनी मतलब से दर्शन एक स्वांग कौन जो क्या बारा देवने का मुंह सन्यास जो से बारा दी भाव बड़ी सन्यास जो से बारा दी भाव बड़ी वाले दाल कौन लोग की कुमार स्वर्ण का दुनिया का वही लोग की कुमार ब्रह्मचारी को मुहावरे लगा वे बाव बारी का उपदेश कार्य लगा लोग का ब्रह्मचारी ज्ञान के विषय कर से ब्रह्म ज्ञान के विषय से ब्रह्म लोग पांच बार की तरह पुकार पर ऐसी लगा गलत बदलाने में गलत बुकला है गलत बदलाने पर ऐसी ब्रह्म बदलाव नहीं लोग पांच बीच चल चल चल बार बुकला रहना से मार है तीन तो चोट काम पे और पांच बार बुकले जड़ काम पे और से डाटा बुकले हर आगमार डार डार मार बुकले डार डार बुकले डार
1: कहाँ बासता को फिरा कौन पिखंग का नामता को कहाँ का कहावा कहाँ का बखानो कह मैं नयावा ना रोगंग ना सोगंग ना मोहंग ना मातंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जन्मंग ना जातंग।

रंगे नमो आद भंगे नमो आद अभंगे। किते कृष्ण से कीट कुटाय उपाय उसारे गड़े फेर मेटे बनाए। अगाधय अभय आद अद्वय अवनाशी परम परा परम पूर्ण प्रकाशी। न आदम न व्याधंग अगाधंग स्वरूपे अखंड प्रताप आद अच्छा विभूते। न जन्म न वर्णंग न वर्णंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असदे। न नेहंग न गेहंग स नेहंग स नाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे। न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सुभूते भविखे भवाने अचित्रे। नारायंग न रंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग अभूतंग अभेकंग। न सत्र न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदैवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं। न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग अजोनिया छयादद्वाजुहंग। न कर्मंग न वर्मंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न शोकंग अभय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग प्रचंडंग अपालंग। न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न वर्मंग न भयंग। न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदैवं सदा सिद्ध वृद्धं स्वरूपे। नमो एक रूपे नमो एक रूपे। नृयोक्तं प्रभानुक्तं प्रतापे आजुक्तं अच्छयादवित्ते अथापे। अभिभुक्तं अच्छयादच्छय स्वरूपे। नमो एक रूपे नमो एक रूपे। न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं अताकं। न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे। नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे। न धर्मं न भर्मं न सर्वं न साके न भर्मं न चर्मं न कर्मं न बांके। न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे। नमो आद रूपे नमो आद रूपे। कौं कंज के मंज के भर्म भूले। कौं रंक के राज के धर्म लूले। कौं देश के वेश के धर्म धामे। कौं राज के बाज के साजता में। कौं रंक के राज के धर्म लूले। कौं देश के वेश के धर्म धामे। कौं राज के साज के बाजता में। कौं अक्षर के पचर के सिद्ध साधे। कौं सिद्ध के बुद्ध के बृजला दे। कौं अंग के रंग के संग देखे। कौं जंग के रंग पेखे। कौं धर्म के कर्म के हर्म जाने। कौं धर्म के कर्म के परमाने। कौं चार चेष्टा कौं चित्र रूपं। कौं परम प्रज्ञा कौं सर्वभूपं। कौं नेह गृहं कौं देह दुःखं। कौं औषधि रोग के शोक सुखं। कौं देव विदेव विद्या। कौं दात बानी कौं जाच गंधर्व किन्नर कहानी।

कहूँ वेद विद्या कहूँ बेमानी कहूँ कोक की गाप की कथा कहानी कहूँ अद्र सार कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ छद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव्य रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रण स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पव कहूँ बैठ कुरान के गीत गाव कहूँ सिद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्म कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्म कहूँ जाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग क्रियं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजं कहूँ राज रीतं कहूँ पूरण प्रज्ञा कहूँ परम

कौ मंत्र विद्या कौ तंत्र सार कौ चंद्र रितं कौ शास्त्र धारं कौ ओम पूजा कौ देवर्चा कौ पिंगुलाचारणी गीत चर्चा कौ बीन विद्या कौ गान गीतं कौ मुलेज भाग्य कौ वेद रितं कौ नृत्य विद्या कौ नागवाणी कौ गारूढ़ कथा कहानी कौ अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कौ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कौ छाल छाला धरे छत्र धारी कौ राज साजं।

टुट तेजन खट बंडा दाता दुरन सर्वंग प्रकार अनुभूत तेजन छेदगात करता सद्विहर्तासना आसन डोल अनुभूत कर्म सा दाता दयाल अनुभूत धर्म जय छत्र मित्र नहीं जन्म जा जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र माँ जय कर्म परम नहीं धर्म त्यान कौने के नहीं व्योत माँ जय जात पार नहीं छत्र मित्र जय ने के नहीं चैन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं परम पीख जय कर्म परम नहीं जात पा कौने के नहीं पितृ माँ जय नाम थाम

जय काल ब्याल कटे नांग अच्छा स्वरूप अखय अभंग जय नित नित उचरंत भेद अलग रूप का तत्कते जय अलग रूप आसन डोजा मित्य अच्छा तोल जय ध्यान का मुन जन अनंत कई कल्प जोग साध दुरंत।

बेदरीत कौ नृत नाच कौ गान गे कौ कर साध विद्या उच्चार कई भजत एक पग निराधार कई ने गे नहीं कह वास कई ने दे कई गेह वास कई प्रम दे सनुदा कई जल निवास कई अग्न ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जल जपत जोग कल्पंक प्रजंत नहीं तथा तात पायत नंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तथा दृष्ट देखे मुरा बिन भगत सकत

जय जम्पोज गण जु जु भवंक बा कंप हो मेरे पयाल भुवन तप ताप सर्व जलेर थनंदन उच्चरत इंद्र कुमेर बल अनकेसरु अभेद अभेय अनखंड अभूत अच्छेद अच्छेय अनकाल पादी अलसुंज ठट्य मेर काश भुवन अनखंड अमंड प्रचंड नरंज रचय दे अधेबर सब किनी दिन जमीन जमा जय रचय सर्व मकीन मका जय राग ना रूप ना रेख रुखं जय ताप ना साप ना शोक संग जय रोग न शोक न भोग जय खेद न भेद न छेद जय जात न पात न मात पित जय रचय छत्र छत्र जय राग न रेख न रोग बण जय द्वैक न दाग न दो गण जय अंड ते ब्रह्मंड रचय दार करि न खंड सच्चे हो रज ताम ते आ तेज क्यो अनुभव पद आ प्रचंड लियो श्री सिंधरो बिंद नगिंद गंग श्री जाच गंधर्व फणिंद भुजंग रज दे अदे अभि नर नर पाल नृपाल कराल दिगम कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडजे सेत उत्पचंग के दे अदे सराद पतंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योतिदंग जय तात न मात न भ्रास्त जय रोग न सोग न भोग भुवंग जय जंप किन्नर जच जुवंग नार नर नार निपुंसक जाहि किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज पाज रथादिक पांद गण भूत भविक भवान तुवंग जय अंड सित जय रजंग रच भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पाण प्रचंड बलि बन बास की फन फूल कली वो मेर अकाश निवास सिदंग रज रोज एकाद चंद्र पितंग दुत चांदनी स दीप दई जय पावक पाण प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र छपा दिए जय लोक चार जय नर गंधर्व देव देव सच्चे अनदूत अभूत अच्छुत मतन अनगात अभ्याद अनाद गतंग अनखेद अच्छेद अच्छेद नर जय चार चतुर दिश चक्र फिरम जय राग ना रू रंग ना रेक रुगंग जय रोग ना सोग ना भोग जुवंग जय सोग न भोग न जोग जुवंग भो भंजन गंजन आश्रंग जय बंदत देव दे नरंग गण किन्नर जज भुजंग रचे मन मानक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज प्रतंग जय पार न पार पूर्ण मतंग अन खंड

अगंज आज देव है भंज भंज जानिया अभूत भूत हसदा गंज गंज मानिया अदेव देव हसदा भे भेव नाथ है समास्त वृद्ध।

न सीत न सोच न घ्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र की विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है।

गजादपि नरादपि करंत सेवह सदा सितास्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त आद जे बटे तपस तपि विशेखिया बियंत बियंत बियंत को करंत पाठ पेखिया अगाध आदि देव की अनाद बात मानिए न जात पात मंत्र।

रूप राग ना रेख रंग ना जन्म भरम विहीन आना गाज पुरखे सो धर्म कर्म प्रवीण जंत्र मंत्र तंत्र जागो आस पुरख पारे हष्ट कीत विख्या।

जज गंधर देव दानु न ब्रह्म क्षत्रिय नुमाए वैष्णव के विखा विराज शूद्र भी वह नाहे गुड़ गौल न भी लभी कर ब्रह्म शेख स्वरूप रात दिवस न मद उर्द न भूम का समूप जाजन न काल कर्म न धर्म कर्म विहीन तिर जद न देव पूजा गौर के नाधीन सरस पतार के तर जानिय जय ज्योत शेष नाम सांस फन नहनेत पूरन होते सोसो हटे सबा सुरे विरोध दानो सर्वे गागा हटे गंधर्व गवा किन्न गर्भ पड़त पड़त थके महा कब गड़त गाड़ अनंत हार हार कहो सब मिल नाम नाम दुरंत भेद भेद न पै लखना से कते देर दानु मूड मानो जच न जाने जेब भूत भव भवान भूपत आर ना अनाथ अगर न पाय जले

दुष्ट गंजन शत्रुभ्य परम प्रमाते दुष्ट अर्था श्रेष्ठ कर्ता जगत मह जग गाते भूत भव भविक भवान प्रमाण देव अगंज आद अंत नाथ श्री परम पुरख भंजे धर्म के अन करम जेतक की नान पसार दे अदेव गंधर्व किन्नर।

सर्व कर्ता सर्वता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज पाम सर्व भुक्ता सर्व युक्ता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट अर्था विश्व वर्ता आदि रूप पारे दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदेव खंड भूम का जले तले मह जपत जाप अमंड सृष्टार विचार जते जानिए सो विचार आद्य अपा श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्न

दुर्जलदल दंडन सुरभ्यंडन दुष्ट निकंदन आदृते चसरा सुर मारन पति दुदार नरक निवारण गुड़गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलगमते जय जय हो सीमा खासर मर्दन रमक परदन छत्र चितयासुर विभ्यंडन दोष निकंदन पोष्ट उदंडन रूपते चंडासुर चंडन मुंड विहंडन धूम्र विदंसन मयक मते दान प्रहार नरक निवारण अधम उदाहरण उर्ध दे जय जय हो सीमा खासर मर्दन रमक परदन आद प्रति डावरू दवंक बब्बर बवंक भुजा फरंक तेज वरंग लंकुड़िया फांदे आयुध फांदा सैन विवर्धन काल असुर अष्टायत चमका भूकण दमक अत सिद्ध छमका फंक फनंग जय जय हो सीमा खासुर मर्दन रम कपर दन दात जिण चंडासुर चंडन मुन बिमुंडन खंडे खंडन खून किते दामनी दमन कन भुजा फरंक फणि फुंकार जोध जिते सरदार विवर कण दुष्ट प्रकर खण दुष्ट प्रहर खण दुष्ट मते जय जय हो सीमा खासुर मर्दन भूमि आकाश ताले उर्ध्य दे दानी प्रासन सुसाभ निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुड़ गते रक्तासुरा चंद्र।

अगोग निवारण दुप्रचारण सृष्ट उबारण सोधमते फणियन फुंकारण पाप कारण सर्व शस्त्र प्रहारण साधमते सैति स्नान अष्ट प्रवाण बोल निबाण तेज तुलंग जय जय हो सीम खासुर मर्दन भूम आकाश पताल जल चार चर चमकारण चिचुरार धूम दुकारण द्रपमते दाढ़ी प्रदंते चोक जयंते मनुज मथंते गुड़गथे करम प्रणासन चंद प्रकाश सूरज प्रत्येजन अष्ट भुजे जय जय हो सीम खासुर मर्दन भरम विनाशन धर्म दुजे गुंगरू गमन गण शत्रु जमन कण फनी फुंकारन धर्म दुजे अष्टार प्रहासन सृष्ट निवासन दुर्प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे स्वत

आकाश अनले संकट निवारण अधम उदारण तेज प्रकरण तंद तबे दुख दोग देहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाद अच्छे सदा समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जीवे जय जय हो श्री शास्त्र प्रखर खण आद अनिल अगाद अभे चंचला चंगी अलग भजंगी तंद तुरंगण तेज सरे कर कसा कुटारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भजे दामनी दमंके के हरण के

बारज विलोचन बृतन विमोचन सोच विचोचन कौच कसे दावनी प्रणा से सुख सरना से सुभृत सुभा से दुष्ट ग्रसे चंचला प्रांगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हो सीमा खासर मर्दने आदे अनादे अगादे उर्धं कंटका विराजे रुड़जन भाजा पाय भाजा सुनत सुरंग को के सुन ला जा के लोक भाजा सक उपराज मधुरंग दुर्जन दल दक्ष मंथन रिच्छा सब न भज रोहरण जय जय हो सीमा खासर मर्दने चंड चक्र तने आदि गुरंग चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोज अरोधन कुरुवृते धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जाग विधुंसन सोद मते जाल पा जयंती शत्रु मतंती दुष्ट

दानी प्रकाशे अंतर नाशे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानी पर करखण सर्वर वरखण दुष्ट पर धरखण पितल तले अष्टाल बाण बोध निवाहन अष्टायत बाण बोल निवाहन संत प्रणाहन गुड़गते जय जय हो सिमह का समर्दन आद अनाद।

रक्तासुन मर्दन चंड चक्रदन दानो अर्दन ब्रडाल बदे सरदार विबरकण दुर्जन धरकण अतुल मरकण धर्म दुजे धूमराज विधुंसन श्रोण चुनसन।

कई मूड़ पत्र पूजा ग्रंथ कई सिद्ध सा सूरज सिवंत कई पलट सूरज सिजदा कराए प्रवेक रूप दो लखाए अन तेज तेज अन भय प्रकाश दाता दुर अत भय अनास सब रोग शोक तेरा दुर अन भय अकाल अच्छा स्वरूप करुणा निधान कामल कृपा दुख दो हर्त दाता दिया अंजन भीन अनवंजना जल धर प्रवाह सर्वत्र सा जय जात पार नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय मित्र जय

पारण पास का पद्माप भेद का तेव अभेद उच्चार है। रोजी राज विलोक राजक रोग रुहान की रोजी नटार है। कीट पतंग को रंग भजंगम भूत भविक भवान बनाए। देव दे खपे हम मेव न भेव लख्यो भ्रम शिव ब्रमाए। वेद पुराण कतेव कुरा हसे थके कर हाथ न आए। पूरन प्रेम प्रभाव बिना पस्यो किन श्री पद्मापत पाए। आदि अनंत गाद अद्वैख सुभूत भविक भवान वह अंत मीन अनात्मा।

और की बात कहाँ कह तू सौ सुपेट ही के पट बीच बचाव जच बजंग सदान दे अभे तुम सभी करते आवे भूम आकाश पदार सा चल जच बजंग सब सिर न आवे पास गए नहीं पार प्रभा हूं को नेत ही नेत है बेत बतावे खोज थके सभी खुजिया सुर हार परे हर आत न आवे नारद से चतुरानंद से रूम नारिक से समूह मिल गायो वेद कते ना भेद लगे सब हार परे हर आत न आयो।

अत्र के चले या छत्र के धरे या छत्र धारियों के चले या मासतरन के साल हैं दान के दिवे या महामान के बढ़े या औसान के दिवे या कटाया जमजाल हैं ज्योत के दिवे या अभिरत के मिटे या महाबोध के दिवे या महामान के मान हैं ज्ञान के ज्ञाता महाबोध दा के दाता देव काल हो के काल महाकाल हो के काल है पूर्वी ना पार पावे हिंगुला हिमालय तावे गोर कर तेजी गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साध पान साधना के तेव बांधे आरब के आर भी आराध तेरे नाम है फरा के फिरंगी माने कंदारी कुरे से जाने पचम के पचम ही पचान निज काम है मरहट्टा मंगेले तेरी मन सो तपस्या कर दृढ़ तिलंगी पहचान धर्म ताम है बंग के बंगाली।

बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है गोखा गुन गावे चिन बचिन के शिशने आवे तिपत त्या दोग दे के दलत है जिने तो त्यायो तिना पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन ताम फल फूल सो फलत है देव देव तान को सुरेश दान मान को महेश गंग दान को अवेश कहियत है रंग में रंगीन राव रूप में प्रवीण और काव पे न दिन सा दिन कहियत है पाइये न पार तेज पुंज में अपा सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है हाथी की पुकार पल पाछ पहुंचत ताहे चीटी की चिंगारे पहले ही सुनियत है केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुख चार केते कृष्ण अवतार केते राम कहियत है केते ससराज केते सूरज प्रकाश केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है केते महादीन केते व्यास प्रवीण केते कुमेरे कुलीन केते जच कहियत है करता है विचार पैना पूरन को पाप पारता है ते अपार निराधार लहियत है पूरन अवतार निराधार है न पारवा पाये न पार पे अपार कब खानिया है अद्वै अविनाशी परम पूरन प्रकाश मा रूप है कैरासी अनाशी का मानिया है जानत रहू न जात जाकी बाबू न माय ताकी पूरन प्रभा की सो छटा का अनुमानिया है तेज को तंत्र है के राजस को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र का जानिया तेजों को तारे के राजसी को सारे के शुद्धता को करे का शुद्धता की सारे है कामना की खाले के साथ निशाने विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रक्षक है सुनन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रोध को अभूत है के अच्छा अविनाशी है काम को निंदा है के खूबी को दियंदा है गनी मन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है कालों के काल है के शत्रुन के साल के मित्रन को पोखत है के वृद्धता की भाषी है योग को जंत्र है के तेजों को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के शुद्धता को वास है के बुद्धों को कर है देवन को देव है निरंजन अभिव है देवन को देव है के शुद्धता को है जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जम जाल को कटैया है के कामना को कर है तेज हूँ तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के शोक को करण है के तेज को प्रकाश है पाइये न पार पार वार हुको पार जा को कीजत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला ही मलगावे हबसी हल्ल बीतावे।

साथी है कि काल है कुचाल के छीर काजी छीरा बद छात काजी छतरा ने छपा कर काजी छप काल इंद्री के कुल के हंसनी से सिहारू हीरा सी ओ सनाबा गंगा काजी तार चली सा तो सिंध रूल के पारा सी पलाऊ गाड़ रूपा काजी रामपुर सोरा सी सुरंगाबाद नी के रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदा गड़े कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सीसा सी सुरंगाबाद नी क्या सोईयत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हल्लब्बा ने हंस का सी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रागिर चांदनी सी चांदा गढ़ जोन जोईयत है गंगा सम गंगता।

कह चौ पई सम सतरै सहस भणी जय अर्ध सहस पुन तीन कह जय भादव सुधि अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखयाने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अफजू वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा दास जान कर दास पर की जय कृपा अपार आप हाथ दय राख मोहे मन क्रम बचन विचार चौपई मन अग्नि सह प्रथम मनाऊं किशन बिशन कब हो नह ध्याऊं।

मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाह गहे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारी मरिय दे

सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मोय हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरिन संघारो प्रथम

अतहीर न मैं तब जूझ मरों दोहरा। दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए। अवर वासना नाहे प्रभ धर्म जुद के चाय सवैया। धन जियो तह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचारे।

हर नाले हर नाल रहो तो मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना सब ना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे घर ता तेरे सब किछ है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द घनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शाम सुख मन आय वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु विटों जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनहो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया दुर्करम पाया तुद जिन कौ सनाम हर कह लागे कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दोख रोग संता पुतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरस

0: दूरा सकल द्वार को छाड़ के गयो तुहार द्वार बाहे नहीं मिला जस गोविंद सुहार दूरा राज करेगा खालसा की रह न कोई पार होए सब मिलाए बचे शरण हो होए
1: उड़गी सुभा मलेश की कर कुड़ा पासार लंका बाजे फते का नेक लंक अवतार चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भूते सुयम को सुबंग सरदास जूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदांग संगे अपंग विभूते देख ते गुप्त जिन नानक गुरु गोविंद सिंह जी काल की सहाय दरबार में

साहिब अंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार सलोका नाल सलोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराज के तुनी सलोक महला पहला।

दर्शन रूपा पार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुनते अवन जे तिलक नाम करतार सुख।